नमस्ते सीताराम, अस्सलाम वालेकुम, स्वागतम सब कोई, वेलकम टू संगीत का संगीत की आवाज। दैट्स संगीत की आवाज मींस द वॉइस ऑफ म्यूजिक। आई एम समारू, आई बी हियर फॉर द नेक्स्ट 3 hours playing for you the best of Bollywood classic music today. Today is more or less a show, a program with all classic songs. May have one or two songs from the modern era, but majority is classic.

0: दिनों में।
1: यस तो शुभीर शबीर कुमार तुमने बी तुमने दी आवाज। वी गोना कंटिन्यू विद शबीर कुमार लता मंगेशकर। तुम शबीर कुमार लता मंगेशकर विद अ सॉन्ग
0: तुमने दी आवाज।
1: अपने दिल से बड़ी दुश्मनी है, अपने दिल से बड़ी दुश्मनी थी। लेट्स एंजॉय।